नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवन अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की रूपरेखा। सो रूपरेखा को जानने से पहले जान लेते हैं आज को दिन, तारीख व समय को। आज दिन है रविवार को, तारीख है 11 अक्टूबर सन 2026। इवन अपने स्टूडियो की घड़ी में समय भाव है 7:01। सो दोस्तों, जो अपने दिन तारीख समय हो जानो है, आओ एक क्रम में जानते हैं प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुने अपन भोर कार्यक्रम। भोर कार्यक्रम में सुने भक्ति भरे गीतन को। एक बात सुने पुनः प्रसारण कार्यक्रम शुभ कल हम होंगे कामयाब कार्यक्रम। हेलो सहेली छिड़िया बाड़ा विधा बुंदेली। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूर्व प्रसाद कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 8 बजे 10:30 बजे तक सुने, 10:30 बजे से 11 बजे तक सुने। आज की बात 11 बजे से 12 बजे तक सुने, बातों में 12 बजे से 1 बजे तक सुने लोकरंग कार्यक्रम। 1 बजे हैं 3 बजे तक सुने सतरंगी रे कार्यक्रम। 3 बजे हैं 3:30 बजे तक सुने बुंदेली गीत, बुंदेली गीतन को आनंद ले हैं। 3:30 बजे हैं सुने बात नन्हे दिलों की। 4 बजे तक 4 बजे हैं सुने हमारी संस्कृति हमारी विरासत। 5 बजे तक 5 बजे हैं सुने किस्सा गो। 5:30 बजे तक 5:30 बजे हैं सुने सुनो जे काके रे। एक बात सुने आखिरी कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। सो दोस्तों, जी आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की रूपरेखा थी। आज शुरुआत करते हैं कार्यक्रम भोर से। भोर कार्यक्रम में सुनाते हैं भक्ति भरे गीतन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में।

सुमरो हरदम हर के लाने, मांगो उनसे जो है जाने, बिना करे एक बहाने। सुमरो हरदम हर के लाने, मांगो उनसे जो है।

अब जो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे, भव सागर से पार उतारे। जब जो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे, भव सागर से पार उतारे। सो इन खोनी चट अरे हाँ के इन खोनी चट पक

फिर रे आज बिन सुन लो हमारी।

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरि तन से भज लो रे हरि राम नाम है जग में।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

मजलू प्यारे

भजन करो हरि जगत जगतारे, भजन करो हरि जगत जगतारे, भजन

0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम कितो नहीं जा रहा, बस इतना ही थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत हेंगे।
1: हाँ, अच्छा अच्छा,
2: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हेंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
1: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
2: हाँ, फोन नहीं करत हेंगे।
1: अरे तो घबरावी वाली बात नहीं है मनीष भैया, देखो तुम का है कि जल्दी भाव खो जाऊ ते, और तुम्हें जहाँ लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथियों के फोन आ जावे।
2: हाँ।
1: तो ऐसो नहीं होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो किसे रेडियो पे आत तो है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना था लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता देवे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते।
2: हाँ।
1: सो में कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को, सो उनकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
2: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हेंगे। कैसे हम सोशल मीडिया को अभी जमान होगा और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं, तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो, और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुना थे और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
1: बिल्कुल, अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे। तो
2: अच्छा।
1: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊ दे, और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर ने कम आउते ही है, सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगा उठेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
2: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जो कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके रेडियो साथी मनीष।
1: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो, हमारा नाम है वर्षा।
2: और साथी रहो, आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
1: श्रोताओं, यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
2: वर्षा, आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
1: अरे बिल्कुल, ये नहीं सुनवाना है बैरू भौजी को, तो जमानो ही है वो। काहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती है वह 101% सत्य हो जाती, और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन पे बातचीत अपन को करवो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काई को बतावे, आपको बताने है गो कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए है गो। और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को, बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
2: बिल्कुल सही कही आपने। कैसे हम जो देखते हैं कि अगर अपन शादियन में भी जाते हैं, दोस्तन से मिलते हैं तो अपन सेल्फी खींच के डाल देते हैं, और अगर अपन अच्छो काम कर ही रहेंगे जैसे पर्यावरण को बचावे के लाने आपने पेड़ लगा दा है गो या को समझा दा है गो, तो बाकी एक फोटो खींच के एक अपने फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे, जैसे लोग देख के और जागरूक होंगे कि भाई साहब ये संग साथी वाले हमारे भैया हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचावे के लाने, तो अपन हो ऐसो प्रयास अथक प्रयास करने हैंगा कि जैसे एक दूसरे से चेन जुड़ जाएगी तब ही अपन जो कार्यक्रम को एक सफल बना सकते हैंगे। एक मुहिम जो हमने सोची है थी कि आने वाले समय में हम अपने साथियों को इतना जागरूक कर दें कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भी समझने लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वाकी बचावे के लिए भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
1: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डायरी को जमानो हैगो, तो ये पे एक बात और हम क्या वो चाहूंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो, ठीक है, जन्मदिन मनो सो उनने का करो बढ़िया केक काटो, डीजे बजो और का कहती पार्टी अच्छी मनी, सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे कि जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले, ठीक है।
2: सही बात।
1: अब मान लो बात चीज हमने देख ली है, तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले, एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें,
2: जिसे
1: कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनो उपाय कर रहे हैंगे तो आप भी उनको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो ताकि आपकी पोस्ट को देखें, हो सकते कुको एक नई उम्मीद मिलवे, नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा इके लाने भी अपन को काम करने आउते, जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे। तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना, और इसे अपन और जिंदा हैंगे, अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे तो इको सांस लेवे के लाने बनाने भी तो है अपन को शुद्ध बिल्कुल एकदम। तो ऐसे कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
2: सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी, कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे तो जान जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे, तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे, तो उन्हों खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताते कि यदि पन्नी जानवर खा लेतेंगे तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते है और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते है।
1: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया, तुम पता क्या होता है, अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आंतन में चिपक जाती
2: है
1: और भी निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर अपन को ध्यान देवे की जरूरत हैगी।
2: बिल्कुल सही कही हैगी, बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत हैगी। और ध्यान की बात आई तो अपन वेर भौजी को सुन लेते हैं, वे भी कछु किया वो चाह रही है पन्नी को रोक लगावे के लाने, उनने भी बहुत अच्छा प्रयास करो है गो। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनते हैं, लेकिन कछु देर बाद सुनते हैंगे, एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैंगे, बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: जी भैया, अपन और अन्य अबे दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में ये इन्होंने से लोकगीत को सुनो है गो। और हमें लगा था कि अब समय ना गवात भाई, अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें जज्जी का, कि भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही हैंगी।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा निकल गए, मैं रात भर चिल्ला चिल्ला के हट जा, भुनसारे जल्दी आ जाओ, भुनसारे जल्दी आ जाओ, लाइट भी चली जा, हाँ हाँ सोते जाने के दे, तीनों बैठी रहते ही, अब अन दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी, मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं है बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कल्लूगा कितने मारेगा, ऐसे ही मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
3: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे जीत, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
3: और कल्लूगा तो गाओ तो तीरथ,
2: तो मैंने तुम्हें बुलावे खिलाने गई थी, क्या खोते अब घर में कछु नहीं है खावे, मैं कहाँ करूँ बताओ, मैं कहाँ बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी कर रही है,
3: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टे बताने लगा,
2: आओ तुम्हें तो यानी फिफ्टे दिखा रहे, मैं बताओ कछु नहीं है घर में आज खावे, मैं कहाँ बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने,
3: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
2: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे,
3: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो थको तू पतो ही है, क्या इसे लगी बड़बड़ा भी रात है तो पानी भरा भी जात,
2: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का जो मैं परिरत होंगी,
3: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाए नहीं गई, अब मैं लाया सब,
2: अब तुम रंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लालाजू के संगे,
3: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी,
2: तो वो तो जाते है आपका रोज के रोज, मैं बाद में बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ, तुम
3: बेचवे की जरूरत घरे चाहे हुए चाहे ना हुए,
2: तो मैंने पूछ तो ले थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़े यार बिल्कुल,
3: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच वे से मिले थे, अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक,
2: तुम्हें पैसा खो रही क्या,
4: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमा रहे हो, कल कह रहा हो तो मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे हो,
3: तू तो तनक में खबर पड़ जाते तो मूड पे चढ़ाए जाए,
4: अरे भज्जा ऐसी कछु बात नहीं है, क्या हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे काल चल रहे,
2: तो लालाजू मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं खाती, तो अब लालाजू मैं का करूं, मैं का बना लो रोज की रोज, मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल,
3: देख ले जाए तो केवल बहानों से जिद लड़बे को,
2: कबे लड़ी मैं बताऊं कहूं लड़ी, आज ही तो लड़ी हो,
3: अबे कैसे ठीक पे बता रही, देख ले तेन देख ले,
4: तनक शांत हो जाते काय लगी भज्जा ने तनक, अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेंटा तो जरूर है आदमी, अब
2: आओ सबरी मुंह ही पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में, तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी,
3: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, हाँ सही तो कह रहा और वो,
2: हाँ वो तो आप सही कह रहे हैं, तुम दो जने जुड़ गए होंगे, अब मैं को है वो पिछले भी,
4: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को से नहीं मिल रहा, जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो वहां से पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी में सुना लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए,
2: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ, मैं कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर कहाँ करत होंगी,
3: हाँ मुझे तो पता है कि ते घूमे भी जात लालाजू के संग में, अब तो शांत रहिए, अगर रोज गाई अगर मुझे पतो चला गाओ फिर मैं शाम के बताऊँ तुम्हें,
2: हाँ मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे, सो मुझे काकन ने चार बातें करके,
3: अब ठीक है लालाजू तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े, सो
2: लालाजू देख लो तुमने अपने भज्जा को जी है इनके हाल,
4: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो, तना तुम शांत हो जाओ करे भज्जा कहूँ गुस्सा हूँ तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार,
2: हाँ तुम हो सो तुम हम डॉक्टर लगे होंगे, अब मैं बाजार जा रही थी, हाँ
4: बाजार जाने,
2: हाँ
4: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल्लू पहुँच गया के मम्मी को मार रहा पापा है, मैं तो ऐसी सुनी से दोबारा भगत आओ तो रोटी नहीं खा पाई,
2: काले भी जा रहे थे मुझे तो सब्जी ले भी जाने लालाजू, चलो मैं तुम्हारी संगे,
4: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को, धनु कह रही थी कि वो चून बड़ा गाओ तो एक बोरी ले आने तो चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे,
2: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं चलेंगे अभी तेई तो जाने मंडी तक, ले लो लालाजी तुम ले लो हम ले लेते तो सब्जी,
4: हाँ भाजी मैं बगल की बापा सेठ की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक,
1: हाँ मसाले लेने तो तनक
4: वो लेने तो आटो लेने तो
2: ले आओ, हाँ ले आओ ले आओ, और मैं ला ले खाऊंगी भज्जा जा सब्जी देखो का भाव दई, अच्छा आलू है का भाव दई 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू लो डाल दू,
4: अरे भज्जा जल्दी कर तनक भाजी और हमें चेक चेक करने लगे का टेम कर दो जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो, अब काय में दे रहे, अरे पन्नियन में दे दो तुमसे कितनी दार कही अपन घर से हम हमेशा झूले ले आए, पन्नियन में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ जल्दी रख दो ले जो पैसा अपनी,

0: भाजी ले ले हमने सब्जी
1: का कह रहे लालाजी। अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने?
0: अरे लेबगा मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो।
1: का लेबगा है?
0: हाँ लेबगा है।
1: अच्छा हाँ, और काहे में रख लो सामान?
0: अब जी पन्नियाँ में रख लो काहे में?
1: लालाजू मैंने कही थी बात ना अभी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने, और दूसरी अपना जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को, बाद में मैंने समझाई थी तुम्हें।
0: अरे भोजी क्या करूँ, ख्याल नहीं रहता का तो घर से आते ना, वो जल्दी जल्दी में नहीं रहता।
1: जब लालाजू तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो कोई कर भी वालो नहीं है, बताओ। जब तुम ही निकालती वो नहीं कर रहे, अब मैंने बाद ना भी तुम्हें समझाई थी, आज भी कह रही, अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। ये बाद में देखो तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी, मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
0: हाँ जा तो यानी सांची कह रही, तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी राशे में, जब भी यहाँ तो झूला लेके।
1: हाँ तो लालाजू अब चलो चलेंगे, तो फिर ब्लैक टाइम होगा कार के, मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े, दिमाग के खराब है वो, टेंशन में है पूरा दिमाग।
0: हाँ तो भाई जी अब जा, बात छोड़ते हैं, लड़की ना आपते हैं, शांत रहिए घर, हल्ला ना करिए।
1: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज जो बाजार में,
0: अगली बार से तो झूल नहीं ले आऊं मैं।
2: आहा मजा ही आ गया राम धई, बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैं यूं, और एकदम सही बात, बिल्कुल फिट बैठवे वाली बात बताती हैं, बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी।
3: सही कही कायसे, उनने हमें बेरू भौजी के जा नाटक में तीन चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी हैगो।
2: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
3: महिला नो जासन जरूरी है।
2: हाँ।
3: यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे।
2: हाँ।
3: या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी, तो बैठी हैं ये लोग जब तक वे
2: यहाँ बैठे सुबह, उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका,
3: तो बोई नहीं
2: आजकल। मनीष भैया आप गलत बात कह रहे, अब वे महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब वे आवे, जब वही पैसा खे चुने, जब वही हम कछु सामान लेवे। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते, और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
3: सही, वो तो बात सही है कि काय से अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत अच्छे माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती है और साथ में आपसी जो बातचीत हो देगी, बासें अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अबे भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी, और सब्जी की तो बात छोड़ो, वे उनके पास पैसा भी नहीं रहतेंगे, बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहतेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं, तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
2: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कह सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है, बल्कि सब जनन के लाने, हम सबके लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत होतेगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी?
3: दूसरी बात हमने जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी,
2: बिल्कुल है,
3: और हमारे जो घर पे बहने बैठी रहती हैगी तो वे एक काम कर सकती हैं, जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ तो उन्होंने किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकते हैं अपने घर में, तो बा में का हो तो एक तो बचत होते है, बचत कैसी बचत होते है, जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सके थेगी, तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दिएगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसी को खर्चा चलेगा, और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
2: जा तो आपने ऐनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लें, मिर्चें लगा लें, धना लगा लें, और का कहते हैं
3: भटा,
2: हाँ भटा लगा लें, और मैं वही में एक दो गोभी लगा लूं, धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर, तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दे, इतना फायदा दे, फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांध दिया भेजी आओ, ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घर की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली,
3: बिल्कुल सही,
2: ताकि बाजार में जो मिल रही वह केमिकल वाली।

0: सब्जी मिल रही है तो अपन एकदम कतनी आके शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो।
1: सही कहा।
0: तो ऐसो अपन को महसूस भी हो लगे है गो, तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सका थो।
1: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी के भौजी बाजार में गई है थी और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो। खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बताई थी कि काहे से पॉलीथीन को इस्तेमाल करवे से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही गो जो नुकसान है। तो जी बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने है वो।
0: तो देखो जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी काहे कि पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढोर बछे जो फिरत रहते हैं बेचारे देखो वे तो काऊ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदों में ला सामान सुबह पन्नी समेत खा जाता है कि भी गठान तो खोल नहीं सका थेगी।
1: सही बात।
0: तो एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थेगी में कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे तो एक तो ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे। तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डूर बच्चे रोज आउ थे वो और इतना वो खाबे के लाने खड़ो होते ही। तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो और जी में वो डूर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए। जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस वो तो पका है उखो तो खाबे की वो है भूख है पेट में, जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते हमेशा जब भी बाजार जाते तो कहते लिया बेटा वो थैला दीजिए बाजार हुए आए। लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहा है वो तीन सौ पन्नी इनमें डांग ले आए। तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर रहे थेंगे। तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने है ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले वो।
1: बिल्कुल सही की वैसा। और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताए कैसे हम हमारा समय भी उड़ो जा कार्यक्रम शुभ कल से जाबे को तो उनने का सीखो है गो बे हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
0: साथी हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
1: और साथियों आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने का सीखो है गो तो जरूर शामिल हो हमारे कार्यक्रम में अपने सुझाव जरूर दोगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
0: बिल्कुल। तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं, तो कुछ बातें हैं।

0: हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है, उसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
1: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
0: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
1: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
0: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व तो नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं, या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे

0: की विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं। इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं, व्यक्तित्व विकास के गुण होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत।

0: नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप। इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं, तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है, लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं। इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव आप डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए।

0: यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
1: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने। समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा बुराई कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना

0: बंद ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार्य में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रणित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है, सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए, लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए, तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
0: 9425147726।
1: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सकें।
0: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
1: तब तक के लिए
0: नमस्कार। और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है, और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को।

0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: दीदी का हमें एक गो सुना दो, एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: बिल्कुल खेल जाती हूँ, सुंदी नगर जाए भाई दीवानी है, बारी हमारी
0: संध्या सरगम को है वो।
1: हाँ
0: बिल्कुल, यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोग भी। ठीक है
1: दीदी, सुना।

सुनो और शाम के बातें बाता राजरंबा अपना रेडियो अपनी बातें बाता राजरंबा।

0: हेलो सहेली,
1: बोल रही
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लुक किसने आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तुम अज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तुम
0: पंचांग दे तो रानो। हाँ वही लोग की सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए लोग की। ठीक है
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी की संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जात के पशु की बात हो रही है थे। और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखे। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात कर हैं और उनकी नस्ल पे बात कर हैं। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

आओ मुए कंगना जैसे पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है। जी हाँ, पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। जी हाँ, अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के

स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से

सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत को, जी गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरा।

अपनी अपनी आग में।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिना को मिला री उड़जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहते अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिरझावाड़ा से आपके दोस्त मातादिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में यही बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों, आप हम आप सब जन को सुनाओ थे जो श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाए जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं राम कुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो को बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: हाँ, तो आप एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचा के देखती रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती लुवा के आ रहे थे, जैसे लुवा के आए तो हमारे मित्र मिल गए और उनने पूछी कि तीन चार जने आ रही हैं, उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। से हमने कही के मटकते आ रही और लटकते आ रही कमर में कर धोनी, बता भी रहे नाम नहीं बता सकता, तीन चार जनी है उमे भी चली आई। सबने कही के मटकते आ रही और लट

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो स्पष्ट। हमने कहीं देखो श्रृंगार की बात है,

खोले के देखो, ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा है, कर्दोनी दो जनी पे रहे। हमने की नहीं, जीने बना दही कर।

साड़ी वाली आए, हमने की नहीं, बोले नीली साड़ी वाली, बोले नहीं, बोले फिर कौन, हमने की है, अरे गंजले ठाकुर दई हमई खा, गंजले ठाकुर दई हमई खा।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथियों के गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा में, नैन तोई कजरा रे गोरे है गाल।

0: बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दुई होंठ लाल रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।
1: लागो है नी को तो है लागो है नी को तो है लागो।

काले लाल सिंगार है, सिंगार भोज से देखे हैं सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे सारी है लाल।

बात है के हर पावन हाँ हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल और लाल लाल चुकटन में लाल लाल चुकटन में ककरा है लाल लाल लाल।

मन रहीने मोरा ए भौजी सदी मोर मोटर सी कर सोला सिंगार मन रहीने मोरा भौजी सदी।

0: दोस्तों, भौजी सजी मोर मोटर सी करसो लव सिंगार मनोरंजन रे भोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहिरवार जी। सो आओ दोस्तों, अब फैशन सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।
1: अरे जागोरी बुंदे लखंड की, जागोरी बुंदे लखंड की, अजब

फूल कंगन में झूले गोरी के गालम में कंद फूल कानन में झूले गोरी के गालम खोचू में नैनन कंडला ओठन लाली चाल समा के दान राली गली में तू है हार।

लाल भाल पे दमके पुणे जैसो चंदा चमके। हाथ रंग बिरंगी चिड़िया मुदरी पैरें भरे उंगलियां बिंदिया बीच ले लार, बिंदिया बीच ले लार।

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार लगत देखत रहिए। तो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जनन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लव है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

एक एक कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो श्रृंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को दो कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में यही बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को दो जाबे की अनुमति। नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: उतार दियो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारे के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी जबई।

भई है, हम सब को आनंदी भई है, हम सब को आनंदी भई है। यही से अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

बहुत खा जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भैये ऐसे तो कह रहे के गगरी उतार दुकाए

तो हम देखो आपसे कह रहे हैं।

0: लेकिन हम ओके बहे तुम कह रही के तू बेने है हमें नेक में जो नहीं जाने मालूम का जाने क्या बहे
1: प्राणन से प्यारी भो जाई ध्यान से सुनियो बात हमारी ध्यान से सुनियो बात हमारी काद हो

0: आप जा करे जे जाने के जब बिटिया हम सब खुश रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे जो ही हमें तुम से नेगे में जाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जा राज दुलारो कुल को है उजिया।

0: अपने दिलों की। टिंग टोंग, दरवाजे पर नहीं आज एक घंटी आपके मोबाइल पर बजी है। एक लिंक आया, एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आया, कोई ऑनलाइन दोस्त बना और आपने बिना कुछ सोचे समझे बस क्लिक कर दिया। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने थिंक ट्वाइस किया? नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं आरजे हर्ष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की। आज इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से जुड़ने का बड़ा माध्यम बना हुआ है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ खतरे ऐसे भी हैं जिनसे बचने के लिए बच्चों को सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से इंटरनेट चलाना सीखना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ है टिंग टोंग थिंक टॉयस अभियान, यानी ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर कदम उठाइए। तो आइए आज बात करते हैं बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए बच्चों, माता पिता, स्कूल और पूरे समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पे प्रोग्राम हेड जया सिंह जी। और मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि टिंग टोंग थिंक टॉयस अभियान शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिहाज से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: थैंक यू। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से आपने शुरू किया है। जैसा हम सब जानते हैं, इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे आप हो, मैं हूँ, बच्चे हो, कोई भी हो, बिना इंटरनेट की शायद जिंदगी जैसे रुक सी जाती है। तो जब आप बच्चों की बात करते हैं तो इंटरनेट सिर्फ पढ़ाई, मनोरंजन इसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज की डेट में हमें ये लगता है कि इंटरनेट कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इसलिए हमको ये देखने की जरूरत है कि बच्चों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल जहाँ बहुत सारे अवसर लेकर के आया है, वहीं बहुत सारी खतरे भी हमें नजर आते हैं इंटरनेट से बच्चों के साथ जुड़ते हुए। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 18 साल से कम उम्र के 11.3 करोड़ बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें से लगभग 14% बच्चे हैं। तो इतना बड़ा आंकड़े की जब हम बात करते हैं तो हमें लगा कि इस तरीके की जानकारी बहुत जरूरी है कि बच्चों तक जाए कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है। और जब हम टिंग टोंग थिंक टॉयस की बात कर रहे हैं तो दोबारा सोचें, ये इसीलिए कहा गया कि इंटरनेट का इस्तेमाल धड़ाधड़ रीले देखने और स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल ये भी है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपना दिमाग खुला रखें और सोच करके ही इंटरनेट इस्तेमाल करें। तो इसीलिए ये वाली हमने कैंपेन का शुरुआत की है।
0: जी मैम, जैसे कि जो है जी, बच्चों की पढ़ाई मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर काफी समय बिताते हैं, तो ऑनलाइन उन्हें किन प्रमुख खतरों या जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है?
1: ऑनलाइन देखिए, जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हैं आप क्या करते हैं इंटरनेट से, या तो अगर बच्चों की हम बात करें, या तो वो बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हम गेम्स खेल रहे हैं, या वो बोलते हैं कि हम कोई वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सारे ही समय पे इंटरनेट के खतरे मौजूद होते हैं, सारे ही समय पे अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है, लेकिन हम इस वक्त खतरों की बात कर रहे हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं चाहे गेम्स ही खेलने की, ज्यादातर बच्चे गेम्स खेलने जाते हैं, तो वहां पर आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे बाहर के यूजर्स भी उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं। बच्चे ना जानते हुए भी अनजान लोगों से मित्रता बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद ना जानते हुए भी उनके और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगते हैं, बिना सोचे समझे उनके भेजे हुए लिंक्स को क्लिक करने लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ, और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी जो भी बातें हैं हमें एक चीज अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए कि इंटरनेट डरने की चीज नहीं है, इंटरनेट

0: बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे बहुत जरूरी माध्यम है ये, क्योंकि बहुत सारे चीजों में बच्चों को ये सिखाता भी है, बहुत सारी चीजों में बच्चों को भी जानकारियां भी मिलती हैं। तो इसलिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, और सेफ्टी अगर हम रखते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारी ये कैंपेन टिंग टोंग थिंक टॉयज वो यही कहती है कि सोचें, इस्तेमाल करें, लेकिन एक बार सोचें, रुकें, फिर इस्तेमाल करें।
1: तो मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैम बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचने के लिए माता पिता और बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है?
0: अगर देखिए आपका किसी बाहर के व्यक्ति से किसी भी तरीके से कोई संबंध इंटरनेट पे बन जाता है, किसी ने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, या आपको लगा कि आप किसी गेम के द्वारा किसी से आप जुड़ गए हैं, और फिर वो व्यक्ति आपसे धीरे धीरे दोस्ती करने लगा, तो उससे क्या होता है कि वहां से खतरा शुरू होता है जब आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास से ही उसकी भेजी हुई चीजों को, लिंक्स को ओपन करने लगते हैं। या फिर वो व्यक्ति जब आपसे कहता है कि अपनी कोई फोटो भेजो, अपनी जानकारी भेजो, तो उसी विश्वास पर आप अपनी जानकारियां भी उस व्यक्ति को देने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत, तब वो खतरा इंटरनेट का बढ़ जाता है। और इसलिए जो कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि आप तुरंत किसी पे विश्वास ना करें। जो भी कोई आपको इंटरनेट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है या जुड़ने की बात कर रहा है, तुरंत विश्वास ना करें। ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, इंटरनेट पे जब आप जुड़ रहे हैं तो हमको ये जरूर याद रखना चाहिए कि अगर किसी तरीके का बुलिंग या किसी भी तरीके की परेशान करने से दिक्कत होती है तो हम भी किसी को परेशान ना करें। हम जो है दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा मानवीयता से व्यवहार करें, दूसरे व्यक्ति को भी हम कुछ उल्टा सीधा ना लिखें, और किसी भी तरीके से प्रोवोक भी ना करें कि वो उल्टा हमें फिर पलट करके पलटवार करें इंटरनेट पे। तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपनी कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका OTP, आपका फोन नंबर, आपका किसी भी तरीके की जो आपकी निजी जानकारियां हैं, वो आप किसी को भी देने से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई जानकारी, मान लीजिए आपने गलती से दे भी दी, या मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस समय पे चुप ना बैठें। किसी बड़े को जरूर आप कॉन्फिडेंस में लें, इस बात को बताएं और साझा करें कि जो है इस तरीके की कोई गड़बड़ी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि वही आपको बचाव का रास्ता दिखाएगी, अन्यथा आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, और एक खुला माहौल घर में देना चाहिए कि बच्चा बिना डरे माता पिता से इस तरीके की बातों को शेयर कर सके।
1: तो मतलब कि हमें कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी ऐसे लिंक पर या किसी ऐसे दोस्त को अपनी जानकारी नहीं देनी चाहिए जो कि हमें नया नया दोस्त बना हो या कुछ भी। तो ऐसे में मैम हमारे पूरे समुदाय की या हमारे माता पिता की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, और ऐसे में रेडियो माध्यम क्या भूमिका निभा सकता है मैम?
0: देखिए, सबसे बड़ा जो माता पिता की भूमिका है वो ये है कि बच्चों को इस चीज से डराएं नहीं। और दूसरी चीज ये कि आपको ये नहीं बोलना है कि अब तुम्हें फोन ही नहीं मिलेगा, अब तुम्हें इंटरनेट यूज ही नहीं करना है। हम लोग का सबसे बड़ा पहला कदम क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अब बंद कर दो सब कुछ, बच्चे को बिल्कुल इंटरनेट से अलग कर दो या ऐसा कर दो। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको ये नहीं करना है कि बच्चे को बिल्कुल डरा करके हम इंटरनेट बंद कर दें या ऐसा कर दें। हमको रेस्ट्रिक्शन अलग चीज होती है और एक चीज होती है प्रिपरेशन। अगर आप बच्चे को प्रिपेयर करा सकते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए। तो आपको जो है बच्चे को बिना डरे बात करने का माहौल आपको बनाना है। बच्चा अगर आपको बताता है कि कहीं कोई उसे बुलिंग कर रहा है, कोई उससे गलत बात कर रहा है, तो आप उसे उसकी बात पे भरोसा करें। जब आप उसकी बात पे भरोसा करेंगे तो बच्चा आके आपको बताएगा। उसको जबरदस्ती डांटना नहीं है, उसके ऊपर कोई ये नहीं करना कि उसी पे आपने बोल दिया, तुम्हारी वजह से ये हुआ होगा। इस तरीके

0: नहीं करनी है, और हम लोगों को अपनी भी चीजों पे थोड़ा सा बच्चों के सामने ध्यान रखना है कि अगर हम दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे इंटरनेट देख रहे हैं, तो और हम ये चाहते हैं कि बच्चा एक घंटा देखे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन जो होता है घर में चीजों को लेकर के, माता पिता को थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे समय बनाने चाहिए घर में कि जैसे खाना खाने के वक्त कोई भी फोन पर नहीं होगा। वो हर परिवार अपने तरीके अपना सकता है और वो तरीके साथ मिलकर के बनने चाहिए। बच्चों को भी उसमें शामिल होना चाहिए कि सेफ इंटरनेट यूसेज के क्या तरीके एक परिवार डिसाइड करेगा। तो बच्चे माता पिता साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप खाने के टेबल पर बोलें कि उस समय पे फोन हम नहीं लेंगे। हो सकता है कोई परिवार डिसाइड करे हम सोने के 2 घंटा पहले कोई भी फोन को हाथ नहीं लगाएगा। तो हर परिवार अपनी तरीके से ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपस में बातचीत हो और बातचीत में एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस हो कि कभी भी किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है इंटरनेट से, इंटरनेट के किसी यूजर से, तो वो आपस में घर में शेयरिंग होगी। तो इसी तरीके का माहौल अगर बनता है तो मुझे लगता है बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित माहौल हम तैयार कर पाएंगे और हम डराएंगे नहीं बच्चों को इस माहौल से।
1: तो मैम, गांव और छोटे शहरों में जैसे कि ऑनलाइन सुरक्षा को लेके हम जागरूकता कैसे फैलाएं मैम?
0: देखिए, छोटे शहरों में अभी भी क्या है कि बहुत सारी जगह जहां हम लोग जाते हैं आज भी ऐसे हालात हैं कि बच्चों के पास फोन तक नहीं है, इंटरनेट नया नया किन्नी किन्नी जगह पे आ रहा है, या इतना ज्यादा गरीबी है कि बहुत कम जो है इस्तेमाल हो पाता है। लेकिन फिर भी जब मैं 14% पूरे देश में बता रही हूँ कि बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी संख्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि छोटे शहरों में क्या करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये बताएं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वार्निंग साइंस हो सकते हैं, रेड सिग्नल्स हो सकते हैं, वो हर एक को पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का कोई यूजर आपसे ये बात कह रहा है कि भाई ये बात किसी को मत बताना, ये अपने आप में एक रेड साइन है। अगर कोई आपसे आपकी निजी जानकारी पूछ रहा है, ये एक रेड साइन है। तो इस तरीके के रेड सिग्नल्स हर एक यूजर को पता होने चाहिए। आज भी बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी बहुत सारे अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, बहुत सारे इंटरनेट स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, खुद पहले हमें वही टिंग टोंग थिंक टॉइस वाली जो रणनीति है, पहले हमें खुद पे अपनानी चाहिए। और जब हम वो बात करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, हमारे जो घर के और सदस्य हैं वो भी देखेंगे कि इससे क्या फायदा हो रहा है, ये क्यों हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि बच्चों को 2-3 चीजें जरूर बतानी है। एक तो ये कि कोई आपका कोई डेटा मांग रहा है, आप नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी तरीके की असुरक्षा महसूस हो रही है, तुरंत आप किसी बड़े को ये जानकारी साझा करेंगे, तुरंत आप किसी से बात करेंगे। और इस तरीके का माहौल आपको बनाना चाहिए कि देखो, तुम कुछ भी बताओगे तो हम आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप चुप ना रहें, मदद मांगें। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, समझदारी है। ये बात हमें बच्चों तक पहुंचानी है कि मदद मांगोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बच्चों को जरूर बतानी चाहिए।
1: साथियों, बातें तो बहुत हो गई, सवाल जवाब बहुत हो गए, और हम चाहेंगे हम आपको ये गीत सुनाएं और मिलेंगे एक छोटे अंतराल के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ। और

0: श्रोताओं, हम लौट आए एक छोटे से अंतराल के बाद और आपको ये गीत कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। और हमारे साथ मौजूद हैं जया सिंह जी, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, ऐसे में तो मैम गलती तो बड़े भी करते हैं, तो आपने या आपकी टीम ने सिर्फ बच्चों को टारगेट किया है, खास तौर पर महिला या लड़कियां?
1: ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वो बच्चों के साथ काम करता है, तो हम ये जानते हैं कि बच्चे बड़े भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं, लेकिन बच्चों के थ्रू हम पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हम सिर्फ बच्चे से बात करके तो इस पूरे माहौल को तैयार ही नहीं कर सकते। जब तक माता पिता इसमें शामिल नहीं होंगे पूरी तरीके से तो ये तैयारी अधूरी है। माता पिता को ही मेन रोल लेना है, बच्चों को समझाना है, जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स है ये सारा कुछ माता पिता बच्चों हर एक को पता होना चाहिए। कई बार माता पिता अगर किसी तरीके की मुश्किल

0: फंस जाते हैं, घर में शेयर हो रहा है। कई बार बच्चों को हेल्पलाइन नंबर्स याद होते हैं, बच्चों को याद होता है कि हाँ ठीक है कौन से वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो ये इंटरनेट के स्कैम से ये किसी कोई भी इनसे घबरा जाता है। लोग अभी भी इन स्कैम से लेकर के डरे हुए हैं, तो डर में क्या होता है आप सही कदम नहीं उठाते हो। तो इसलिए घर के हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है, हर एक को ये नंबर याद होना चाहिए 1930, मैं रिपीट करूंगी। उसके अलावा cybercrime.gov.in, ये एक राष्ट्रीय साइबर अपराध कि जो है ये रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसपे कोई भी अपना अगर कोई भी दिक्कत होती है या किसी तरीके की कोई ठगी हुई है, कुछ हुआ है, तो आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। तो ये दोनों चीजें तो है, बड़े बच्चे सभी को ये पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम सब जानते हैं 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसका नंबर हर बच्चे को पता होना चाहिए। आज की डेट में 112 जो है वो इमरजेंसी हेल्पलाइन है, जिसमें तुरंत आपको किसी भी तरीके की आपातकालीन सहायता चाहिए तो तुरंत आपको जो है मदद मिलती है। तो ये तीन हेल्पलाइंस और ये आपका जो है cybercrime.gov.in, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के दिमाग में बिल्कुल टिंग टोंग की तरह क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही टिंग टोंग हुआ आपको याद आ गया 1930। तो ये टिंग टोंग थिंक ट्वाइस कैंपेन इसको भी बोलती है कि ये सारे नंबर्स और ये सब कुछ आप एकदम अपने पास, एकदम अपने दिमाग में तैयार रखें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बच्चे बड़े सबके लिए हैं।
1: तो क्या हम ऐसे में मान सकते हैं कि शुरुआत में बच्चे को सावधान करना है, आगे इस कार्यक्रम में और भी लोग जुड़ेंगे क्या?
0: इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हम लोग हर तरीके के स्टेक होल्डर्स के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग जहाँ गाँव में बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, वहीं हम पंचायतों के साथ भी बात कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ भी बात कर रहे हैं जो बच्चों के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम सिर्फ बच्चों पे फोकस्ड है, ये कार्यक्रम बच्चों के लिए खास तौर पे है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में होते हैं। अगर बच्चों को अगर बड़े सपोर्ट नहीं करते, तो अगर कहीं एक बार बच्चे के साथ बुलिंग होती है या कहीं एक बार बच्चे को कोई थ्रेटन करना शुरू करता है, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा गंभीरता से असर कर सकता है अगर बड़े उसमें टाइमली इन्वॉल्व नहीं होते। कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि जो है हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सेमी प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी इस इनिशिएटिव को लेके जा रहे हैं, और हम लोग सभी से कह रहे हैं कि इस कैंपेन से जुड़िए। दिल्ली एनसीआर में इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए ट्राई वॉलंटियर बनके कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो मैं इस रेडियो प्रोग्राम के जरिए ये भी लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता हो इस कैंपेन की अवेयरनेस जनरेशन के लिए, इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए, तो सभी के लिए ये कैंपेन ओपन है, आप प्लीज संपर्क करें, आए, मदद करें। ये हमारे बच्चों, बड़ों, सभी के लिए ये कैंपेन है।
1: जी
0: जी।
1: तो साथियों, अभी हम सुन रहे थे रेडियो बुंदेलखंड 90.4 के साथ जुड़ी हुई थी प्रोग्राम हेड के तौर पे जया सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा कैसे करें, उनमें माता पिता और पूरी समुदाय की क्या भूमिका हो सकती थी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बच्चों को अच्छी जानकारी देने के लिए, माता पिता को जानकारी देने के लिए कि हम कैसे सुरक्षित कदम उठा सकें। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके मोबाइल पर कोई अनजान मैसेज, लिंक या रिक्वेस्ट आए तो तुरंत क्लिक मत कीजिए, एक पल रुकिए, थिंक ट्वाइस कीजिए और फिर सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। याद रखिए, टिंग टोंग थिंक ट्वाइस। मैं हूं आरजे हर्ष और आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के बच्चों को भी ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जरूर समझाइए। फिर मिलेंगे एक नई बात और एक नई जागरूकता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मैम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू बुलाने के लिए आपको, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम। साथियों, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम नन्हे दिलों की और ये कार्यक्रम का समय हो चला है यहीं पर खत्म, और हम चाहते हैं आपसे अलविदा, लेकिन जाते जाते हम आपको सुनाना चाहते हैं ये प्यारा सा

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है वो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने हैं को और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है। तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए। और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो उसके बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चला थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

हृदो है, हाँ भारत माता को हृदो है, ई पे हमें घमन अपनो प्यारो बुंदेलखंड। भारत माता को हृदो है।

धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान। तो जितनी गर्मी उतनी बरसा, जितनी गर्मी उतनी बरसा,

महान के सब तुलसी भये महान। सो संत कभी गुनियन की खान तान से गूंजे तान के सब तुलसी भये।

कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। रानी सुवर गले की पाई, कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। प्रेम भाव के भूखे भगवन, प्रेम भाव के भूखे भगवन, वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदे लेखन। प्रेम भाव के भूखे भगवन, वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदे लेखन। भारत माता को हृदय दोहे दीपे हमें।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी में प्रकट होना चाहती हूँ, कुछ मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट नौ दिन की बजाय तीन दिन में खोल दिए। तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
2: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं।

0: संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासे हूँ तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है। और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनके सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है। और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, कोताही स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया। और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े
0: और पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लितता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे हैं।
1: तो आप उन्हें तय किए हो?
2: यही किए।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करे थे यहाँ जन्म ले के ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कह चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है। और

0: आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
0: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
0: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर दो मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां है उसमें रामचंद्र बोल रहे हैं, हम देखिए और बहुत बड़ा है मंदिर। उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया है।
2: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुंवर राजन के कुंवर
2: आओ
1: और एक हति बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ।
1: अच्छी तरह से रहे उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी याद है सुबन खुन चले जावे।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार भी अपनों घोरो मस्के, भी अपनों घोरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरती तूने फिर करना।
2: अच्छा,
1: कल के दिन में भी बोले बोले कल बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: हो भी है बादशाह, बीजन और बादशाह दोनों जने हो। कह के राजा हो बादशाह, तो बस बीजन ने जिसे बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कले कवैया कहाँ के जाने छटे कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव घे को से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे,
2: जा सही के
1: नाव को सब पतो है।
2: हाँ।
1: तो नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीजन के बार बन गए।
2: हाँ।
1: अब राजन के बादशाह के बनने।
2: हाँ।
1: तो बादशाह के बार बने।
2: हाँ।
1: तो बादशाह बोले बोले कर ले का बोले कर ले, ये राजन के राजा बोले कर ले

0: जावे ससुराले
1: हाँ।
0: हमारा हम कैसे चली जावे
1: हाँ।
0: अरे बोली कर ले राजन की राजा आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं ना।
1: अच्छा
0: हाँ हाँ हाँ बोली कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए
1: अच्छा
0: के नाव होगा वर्षा होगा भीजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई बस अब चलिए ससुराल के जाना। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब वीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
1: अच्छा
0: गली में से बटी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो तो चलो वीरन पिया पानी तो वीरन गौ पानी पीवे के लाने सुबह ने बीजक बांचो।
1: अच्छा
0: बीजक बांचो बाद में सुबह गली अलग अलग वीरन हो बदमाश वीरन बदमाश हो।
1: अच्छा
0: तो वीरन ने कहा करो किस्सा के पानी पी के बावली में और वह बीजक को भरा दो
1: ले उसका तो
0: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बाचे ले से संग छूट गो इसे कह हमारे जी ससारे
1: चलेंगे
0: तीनों जने जा तो वीरन बदमाश होकर रहा तो बस अब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेली सुबह में बीजक में गिलाव लगो तो राजन ने अपने खोबन के उलीच उलीच के माए
1: धुदाओ
0: और फिर उगे बाचो बाचो बाय सुबह ने उन्हें प्रधान पूरो लिखो कि जा राजन के कुमार को रास्ता गई और जब वीरन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले क्यों वे वीरन बोले कही राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कल्ले पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है हट कर ले के हम अपने ससुराल जाते हैं। तो बोले कल्ले उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल्ले जो पहले आज विदा करा के वो जो बावरी पे ठहरे चार दिन किसी को बीत जाए
1: सही सही
0: तो बस बेटी तुम भी अपने ससुराल चले गए और भी अपने ससुराल कल्ले वो जी सताई रखा नाव बोले कल्ले जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं कल्ले तो राजन की कुमार और सताई रख का दो जने जा रहे वीर अपने ससुराल चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे जो बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास बोले कल सुताया कब बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर शरीर से प्राण निकलते जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना पानी ना माए पानी अपन वन में हैंगे बोले कल अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के बोले कल हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़िए ऊपर देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती पानी जरूर बोली कल चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल अरे खुली जाए सुबह जन में दे पाई खुली सो जीत गए कि हाँ फिर बाहर आराम से मिले आराम से भी नगद चली गए तो उतरे काकिस्ता हाथों के जानवर लड़की राजा ने खून बियाई थी वो नदिया में स्नान कर रही।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही तो सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सुताएगा का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम ले आए बोले कल हाथ जाके ना पूछो पानी पी बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे कौन के मचो सचो भर के आ बोले कल महाराज कल तालाब है वो बड़ी अजूबा लड़की सफर रही है तो उसके साथ हमारा

0: अच्छा छा के गिर पड़ी तुम तो समझे सतो भाई लिया वो हम खुद पिया से मर जा रहे अरे बोले करे बगरा में सुबह पानी बगरा के दूई में तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के वहां नहीं वो कल्ले सुदायक का बोले कल्ले के ये राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करे अपन ताए को और मुंह करे तालाता है कहो उन्हें कही

0: नाव कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
2: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा हां तो फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जोन
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: बा बोल रही है

0: अयक्का बोले कल्ले राजन की राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं सही कही बोले कल्ले नहीं अबे तो हम और बोलेंगे अब राजा बोल रहे हो भूले मोसा।

0: कितने गली बता दो सो काऊ के द्वारे में
1: आप पहुंच जाए।
0: अब के जो हाथ उठा के अगर बता दीजिए, अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए, इनको बदल शरीर है कैसा, मुंह करने माइक हो और पीठ करे इंताइक हो, कई के अब ऐसे बताया सुनने के बाद माँ से बाबू जो

0: क्या बात भाई।
1: अच्छा
0: वाने बली ना बताई
1: हाँ।
0: ना वाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर गई
1: हाँ।
0: बस साहब उनने किसी गली तो पूछ ही ली
1: हाँ।
0: गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ तो गाँव के लाने तैयार। अब वाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए वाने जल्दी पल्दी सफरों और सफर फूर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हती से जाते भवन द्वार सत्य का को देखो तो ससुराल भवन द्वार उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सो भी घरवाओं को बंद हो। अब भाभी से बोली भी ये

0: भाभी ने कही ऊंचे कलेला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाला।
1: अब लुबग्गा आ गए तो
0: लुबग्गा उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी करी। अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल लगी हो अपन को कौवा गेल कुमार बनाए थी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हाँ में तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सवती सोने व्यंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाना तो दोनों जने भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने थना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भीड़ कैसे खुलेगा।
1: हाँ, सही है।

0: नेता की सरकार के मोय कच्ची अब अभी खुल गओ के जई है हां
1: सही कह रहे
0: क्या बात
1: हां दही के
0: होते होते जब भाई बब्बा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने माता की माटी सरकार के ओ बस सुता जा काने पर झटपट जो कछु राजन चली तो बांधी
1: हां
0: और बापनी बांधी
1: हां
0: ओ बस चाची माटी जो कमे लगा के कर लगा है काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज में नहीं अपनी चाची धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं यहां
1: हां जैसे टाइम लगे
0: जैसे टाइम
1: हां
0: बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए हां वो अपन घूरो कस के तैयार हुए इस पापन को मिलवाया हां इसको मिलवाया तो बस दिया कि सो तैयार हो गए जहां से तरा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कस हां सब रात में घूरो कसरो सुबह ऊपर को पले चावल पीटने कसरो
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटने के तन दिन तो गई आगे बारी आगे
1: हां हां ये मैं भी दे रहे
0: थे ये भी दे रहे था कि कैसे
1: हां
0: जब सवेरे भाव जाए तो बस जो राजन को हां साहब कल भी हो गए तो राजा का कल क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया जाए अच्छा कल तो ने भज्जा छोड़ चार कंजों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल निकल के भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा रेशम डोरा पाट कोरे जले दियो रे चाटे का।

0: देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ तो बस
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की ने कही जाओ
0: तो पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराओ तो पैर वेर को संग
1: है सही है
0: बेर बढ़ के जाओ तो उनने हदीसो जैसे कच्ची पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: फिर मई खून पाया ले गए
0: मई खून वही जहाँ उनकी रानास थी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अब उनने सोची रानी ने कि अगर भोजन है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन

अरे भोर जी, अरे अबे नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना उनसे, नहीं कर बाने फिर दो जाकर कहो।

0: कामनी। अरे खोलो का, अरे के बार जी उन खोलो कंठ के बार निके उन नाव से कई के सवार नहीं खुल
1: गई।
0: अब जो दोहा सुनो साधु ने, साधु ने सुनो दोहा साधु के रामन से। शंख बजे सा जू जा रे

0: जी उन्हें संत बजे से साधु जगे बम घले रहे झूठ अगर इतने में ते बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कूद कब कूदे
1: सही है का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जा मेरे विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास नहीं गई। अब फिर की दोहा कह रही है

0: लड़की लड़का से लड़की भाली रे सो मेरे रीते ब्याए जी। अरे ऐसी सासों का काम किया तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी रीते ब्याह शादी कर देती।
1: तो बोलती
0: ये तो गड़िया है ना यार, सुबह पटक था जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे में रात को समझ जब कहाँ जा रहा है जो सवेरा हो सोने घोरो मस्को उस चलिए। सो ससुर साहब ने कही करे दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुराओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है तो भाई बिहती जो डट गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें बिजाऊ उनकी कई वो उनमें खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखा था। खा पी के घरे चले गई बस आओ अब बिहती जो अब पीना थकावे बारे हकी तो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई क्योंकि भक्त छोड़ के अब खुद उनने हकाई अब सुताई अब काल कबाजी ने हकाई सुबह हका के वह सब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पूर हो रहे से बस गए, शाम हो गई से बस गए। बस के में अब बोले कर ले सुनो सुता का बोले कर ले का कल ले पापन को नहीं छोड़ जाने यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सताई अक्का से कही के सताई अक्का ऑर्डर दौरान के पत्नी लगाओ तो सताई के अक्का गए से तीन पात्र में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को क्यों बे ये तीन पात्र में कहाँ खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमा रानी की फार के मार के पात्र लग के आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने

भगत तो हमें छोड़ के ही इसे का करें जगजी सुबह घोड़े की पछाई की बटोर बंदी की सुबह छोड़ के बाने पीने से मार लाए बटोर ये भगे तो जब ईर टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचूक किया ले सुबह सुनने के तो घोड़ो भंसाई रात भाई को बढ़ाओ सुबह तनो वो तनी बटोर कहीं दूर सो नेक चावा पट्टों को घोड़ी में सुबह दूर पाए सो उनने कही रानी

चैनल दृष्टि हर में बुझा दी हमें, हम न जई गांव के रहे न भई गांव के रहे, अभी सुन लवारे के से चले गए, भी अपने भवन को चले गए। और रानी ने अति सुबह की नस्खू बेद घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी बकरी नस्को हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्या से कचुवती सो राजा गिलंड की बाग में जा रहे सो अन्य भज्जा घर वाले नाय के टूपी माए की बोलनिया टूपी रानी वो तो मालिन है जिसको मालिन बोली बोली कर लेगा ये कौन कहाँ की पापन आगे कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन को बहू में भीतर काट गई बाबा डीरा दिया जाए अभी तो राजन की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो तो रही है तीन तो सुबह तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सो ऐसे कसी बिलादना हो गए दुकान दुकान सो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हटी राजन की यानी जमदीव नाव तो का नाव तो बेटी जमती जमती नाव तो बेटी को सो बिन्न बे फूलन की तुला तो लगती बात सुबह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूम आए तो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रह रहे सो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है तो कहो राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंचे सो घरे पहुंच पांच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ अब्बासा ने हती सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह तो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रहे रानी उनकी बादशाह की तो बिन्ने सोची अगर बिन्ने हमारी खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी उसी भाई ना करती हवा सो उन्हें हर सांस लगी सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सो ना उसे पूछी जावा बोले क्यों खवास रखता बोले कले कहिए राजा कले कारण का है ये को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया और भाग गया तो उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे बोले कले चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह जीत गए दोनों जन नाव नहीं गए दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हटी सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रस्ता थी वह धर सो मालिन के

0: कर पहुंच गए सोने के लिए। ठीक है, उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डेरा दो जन में गए सोने भैया, मालिन ने उन्हें घड़ी आई, बोले कल्ले क्यों रे कहा कि हो परदेसी कैसे पर जाए तुम जगह बात, वो हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा दे। हाँ सुबह आराम से मालिन को साधा, तो मालिन से पूछी सारी बात, तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है वो रंग महल में पहुंच गई राजा की लड़की, अरब कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कौन जो रूप काट को बोर रूप काट उन्हें ऊपर दे साड़ी करी। सो मालिन ने किसी को नहीं पहुंची, राजन ने बोली कल दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे, उनने सब नाश कर दिया बगीचा का। सो उनमें छिड़ गया कि ये तुमको राजा बुला रहे, बोली कल हौसा जब तो भी ऊंची हती बिल्कुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के, बोले उनकी गैल में सलाह हो गई, बोले कले तुमसे बात करे से तो मूर काट दो और हमसे बात करे तो हम मूर काट लेंगे। सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो अब उन्होंने हाथों एक बीजक राजा के लंगे कि अगर जो बीजक जी न पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। तो अब उन्नति तो जब सलाह हो गई बस सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलंज ने जो बात हो गई कि तो हमारी रानी बन जाओ, बोली कर ले नहीं ये राजा गिलंज को बाग कटे चलिए और जो मकान गिले चलिए। सुबह ने कि तो ठीक है सुबह जो भैया जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जाओ जावे। सुबह रानी जो बबीती थी से छाजी को दातन कर रही थी तो बीजक लाई थी बबीजक बबई लूटा के करती दादा वो लूटा में लिखो है तो सुबह बीजक को गई जो बादशाह ने बात बीजन बस ले बादशाह ने बीजन ने बात बोली कर ले ठीक है बोली कर ले कह तुम तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कि सुबह तुम ना तुम तानो और हम झंडा रहे। सुबह गए डारे सो आराम से गए डाल भी के लाने तनक तसला में से गिला पहुंच गए वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलन की लड़की सो उन्हें अति सो अब तो खिलाड़ी हते सो उन्हें बोई लूटा दाओ बोई लूटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा झेला विज्ञान की बल्ला क्या सुन और बल्ले लूटा बाग में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजो छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर कर गयो इन तुम भूलत कैसे हैं बोले कर ले महाराज उते नहीं है मजबूर सही तो जो राजा पर बोले कर ले या पर बोले पकड़ लिया सुबह जब फिर गए बोले कर ले आ रहा है चलो अब बिने मिल गई थी वो बीजक उनने वहां से उसे पूरो ये कब दो मिल रही दो मिल रही लेकिन फिर उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तो तुम काट ले। सुबह राजा का उसे बात ना कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगियां एक दिन आ तो बोली मेरे को खिचिया के पहुंचे गए सो राजा ने कही बोले कर ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात से।
1: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खुद सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

0: भैया आज हम आप सब्जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं। जी को भैया आप सुनो और सबई पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैया की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और इन जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को। जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो एक गीत को सुनो, आप सुनो सबई पंच भैया।
1: दरस राम के पाके, दरस

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है, और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितने है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कहाँ के रे विवाह हो दादा?
2: केना के पूरा पटोक ग्राम केना जिला टीकमगढ़ तहसील नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे थे?
2: ये हल्को हल्को काम करे अपने दो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: वर्कर हम का बस किए काम वाम हम कहते नहीं।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के विचार को जब से तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं लगत और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिराज हर एक बात की नेक में मुश्किल दिखा दो।
1: और वैसे वह समस्या है अपनी?
2: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो दी हमें नहीं आया तो हम खा रहे हैं।
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ।
2: आओ बैठ भी जाओ जी नहीं आओ थे तू छे।
1: हाँ अच्छा
2: अस्पताल जाने।
1: हाँ और अपने सेवा खुशामद के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामद सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है तब लोग ठीक नहीं है कहते चला फिर कर लेंगे तेना
1: दिक्कत है उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: रात में झील से मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा जो खाए तो ठीक ही है। अरे कछु ना कछु ना तो 10-15 उसको तो खर्च है आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 उठा के चल जाते।
1: दिन भर आपको कैसे कटा था?
2: मेरा दो बच्चे उनका दिमाग लड़ा दे सुझारे सुझारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे
2: बुढ़ापे
1: मतलब
2: दिक्कतें आदमी का दिक्कत तो देखे कागज है जो जो जो नहीं बांच पा रहे हम मतलब और उसी नहीं दिखा कगदा नहीं बांच पाऊ मुझे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कोनो अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो? खावे पीवे की आपकी का है?
2: खावे पीवे को तभी नहीं है जो घर में है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में
2: इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया पापा जाना फेरी पापा ही जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाते हमारे मिल जाते दूसरी की जठानी न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अभी के सब
2: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छा हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार हो काम प्रेम में उबर उबर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसा टका खर्च ना हो जाए।
2: हाँ घरे पैसा ले मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं।
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाची और कैसे रहें चाची आपका कंचाओ सब जनन से आपको का के वो है?
2: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
1: तो वही बात बड़ी बात तो मतलब शुरू से आप बताओ
2: यात्रा ना कछु।
1: हाँ यही बात आप यही बात पूछना चाहूंगा शुरू से बता दो आप के आप का के वो चाहते
2: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
2: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जाकर आगे है जो मतलब है जब कहो के चले जाओ पैसा आते चले गए अब जैसे पैसे ही नहीं आता तो कहाँ जा क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहता
2: जी उठा उठ के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खास खो जाए बाल बच्चे ने सामान खाने दी तीन चार सौ महीना मिले गए तो अपने खा चलाते हैं।
1: ठीक है दादा, जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो देखो भैया, अब अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम करें। और भैया ये तो बातें अपनी अब हतीसो सब जन ने सुनी ही है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं, तो अपन और सुनत है एक गीत को। और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने, और इनने देखो इस शब्द में का कहा गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो सबई पंच भैया।

भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

तवैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

अकेले अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इसी वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो तो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: सर
1: हाँ, दीनदयाल भैया कैसे हैं? बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

el pobre.

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए हुए वाले के पाए और बहुने वाले हो गई, पानी आने लग रहा।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो
1: आज? हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ सुनवा दीजिए थोड़ा।
0: चलो
1: बोल तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देखो एक उपाय।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सक जाने तिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

अंतर फल कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराज

0: शंकर से सगाई में मस्त रहे चिलम।
1: हेलो, बुंदेलखंड नंबर 1950 है।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाव से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्ते।

قسم موسیقی معولتی ہے.

0: माता सिंह भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147726।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

कार्यक्रम मेरी मुंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुद जाने की अनुमति साथियों अपने तपने फिर हुई है मुलाकात एक डेरा पे एक कार्यक्रम में जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें ये फोन नंबर पे और ये पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।